0: California. Extreme energy drink.
1: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
2: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि। पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
1: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
2: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियू, पिआइसियू, आइसियू, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसुति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
1: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
2: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
1: सम्पर्क नम्बर 081-535-717।
3: आज यहाँ कहाँ भटका थियो?
4: आम और फल के बिरवा खरीदे खातिर परेशान हैं।
3: परेशान हो कोई बात नहीं है। प्रभात नर्सरी फार्म जोन भवनियापुर 14 महिया है, जिके प्रोपराइटर हैं प्रभात कुमार चौधरी और उनके फार्म के संपर्क स्थान है जिला हुलाक कार्यालय के पछाड़ी त्रिशक्ति मारवाड़ी मंदिर के सामने चौधरी सरकार बक्स पोली क्लिनिक है। हुआ तमामन मेयर के आम के बिरवा दशहरी चौसा बम्बैया अमरपाली नीलम मल्लिका गुलाब खास और फल महिया लीची अमरूद कटहर केला अनार अंगूर नाशपति जस सब मेयर के आम और फल के बिरवा के संगे लकड़ी के खातिर सागवन जस बिरवा उचित दाम में यहाँ मिलत है। सैगर खरीदे पर यहाँ विशेष छूट के व्यवस्था है।
4: तब तो हम हो जाइबे और दूसरे को बताइबे।
3: संपर्क नंबर है 98487916।
5: ए रुको रुको रुको,
6: के भयो, किन कराएको यस्तो?
5: दाई यस्तो पनि हुन्छ र? 30 दिन सम्म अनलिमिटेड रे।
7: के
1: एउटा राम्रो विद्यालयले केवल पढाइ मात्रै होइन, बच्चाको भविष्य पनि बनाउँछ।
2: नेपालगञ्जको बिपी चोकमा अवस्थित जीभीएन सेकेन्डरी स्कुल गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासित वातावरण र अनुभवी शिक्षकहरूको उत्कृष्ट संयोजन हो। यहाँ विद्यार्थीलाई पुस्तकको ज्ञानसँगै संस्कार, आत्मविश्वास र जिम्मेवार नागरिक बन्ने शिक्षा दिइन्छ। आधुनिक शिक्षण विधि र सुरक्षित वातावरणका कारण जीभीएन अभिभावकहरूको पहिलो रोजाई बन्न सफल भएको छ।
1: यदि तपाईँ आफ्ना नानीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि विश्वासिलो र उत्कृष्ट विद्यालय खोजिरहनु भएको छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस् जीभीएन सेकेन्डरी स्कुल बिपी चोक नेपालगञ्ज।
2: शिक्षा र सफलताको पर्याय जीभीएन सेकेन्डरी स्कुल। सम्पर्क फोन नम्बर 081-531-570।
8: सूचना स्वास्थ्य शिविर बारे सूचना।
9: विश्व थाइराइड दिवसको उपलक्ष्यमा वरिष्ठ फिजिसियन एवं एन्डोक्राइनोलोजिस्ट डाक्टर अल्ताबन राईद्वारा थाइराइड सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श सेवा हुन गइरहेको जानकारी गराइन्छ।
8: हजुर, थाइराइड सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श, विशेषज्ञ डाक्टर परामर्श सेवा तथा सम्पूर्ण सेवाहरू मात्र ₹500।
9: डाक्टर अल्ताबन राई, MD इन्टरनल मेडिसिन TU, एन्डोक्राइनोलोजी दिल्ली, वरिष्ठ फिजिसियन एवं एन्डोक्राइनोलोजिस्ट, NMC नम्बर 11504।
8: सम्पर्क ठेगाना सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, बिपी चोक नेपालगञ्ज। सम्पर्क नम्बर 081-531-860, 081-531-861 र मोबाइल नम्बर 98-584-8-61। मिति 2083 जेठ 23 गते, समय बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, बिपी चोक नेपालगञ्जमा आजै नाम दर्ता गरी ढुक्क हुनुहोस्। सम्पूर्ण सेवाहरू मात्र 500 लिन नभुल्नुहोला।
10: यो कृष्ण सार FM
11: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: toilet pony, yeah. Extreme energy drink.
1: बहिनी, हमार घर तो बढ़िया है, मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दी जस लागत है।
2: हाँ तो दीदिया, अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परी जस लागत है, आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही।
1: अच्छा, ऐसा तो चिंता काहे करी हो, स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है।
2: साचू दीदिया, का का मिलत है हुआ?
1: सुनो बहिनी, स्टाइलदार सोफा, आरामदायी बेड, आकर्षण डाइनिंग टेबल, टीवी रैक, ऑफिस फर्नीचर, गलीचा कारपेट के साथ है घर सजावे वाला सब सामान चीज एक जगह में मिलत है।
2: और डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार बनाई के देते
1: है? काहे न बनाई दी बहनी, अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है।
2: और मने डिलीवरी और फिटिंग?
1: अरे बहनी, बांके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है, इके साथ है फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है।
3: आस है तो अब हमरो घर भी नवाजस बनावे है, स्टार फर्नीचर लैंड से शुरू कीन जाए।
2: हाँ दीदिया,
4: स्टार फर्नीचर लैंड शिक्षा कार्यालय के सामने बीपी चौक नेपालगंज, संपर्क नंबर 9860073070 और 9815067682।
5: ए रुका रुका रुका,
6: की भयो, किन कराएको यस्तो?
5: दाई, यस्तो पनि हुन्छ र? 30 दिन सम्म अनलिमिटेड रे।
7: एनसेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड। यति मात्र होइन, लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभीजको फ्री एक्सेस पनि
6: हो र?
5: हो नि, एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड।
8: ओहो, आजै यो सुपर भ्यालु प्याक *123# डायल गरी वा एनसेल एपमा गई लिनुहोस्। एनसेल नेपालकै लागि।
9: ब्राइटल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुलमा व्यवस्थापन तथा विज्ञान संकायका लागि आवेदन खुला गरिएको छ।
10: हो, भर्ना खुल्यो। व्यवसाय, बैंकिङ, उद्यमशीलता, होटल व्यवस्थापन, वित्त, कानून, पर्यटन तथा कर्पोरेट नेतृत्व क्षेत्रमा भविष्य निर्माण गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि सुनौलो अवसर।
9: व्यवसाय अध्ययन, लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, कम्प्युटर विज्ञान, होटल व्यवस्थापन, पर्यटन, वित्त, व्यवसाय गणित र सामान्य कानून,
10: विज्ञान संकाय, चिकित्सा इन्जिनियरिङ, प्रविधि अनुसन्धान, स्वास्थ्य विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा विज्ञान सम्बन्धी क्षेत्रमा करियर बनाउन चाहने विद्यार्थीहरूका लागि
9: भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित र कम्प्युटर विज्ञान।
10: विद्यार्थीहरूले आफ्नो करियर लक्ष्य अनुसार गणित, जीव विज्ञान वा कम्प्युटर विज्ञान जस्ता विषय संयोजन छनोट गर्न पनि सक्नेछन्।
9: किन रोज्ने ब्राइटल्यान्ड?
10: हो, सबै विषयमा दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरू, केस स्टडी तथा परियोजनामूलक अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण,
9: पूर्ण दिवसीय कक्षा सञ्चालन, वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता सिप विकास,
10: आधुनिक विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान तथा होटेल व्यवस्थापन प्रयोगशाला, उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कार्यशाला,
9: नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, MBBS, BHM, BITM, BBA, CA, MBS तथा अन्य व्यवस्थापन तथा विज्ञान क्षेत्रका लागि करियर परामर्श,
10: उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको सुविधा। अफिस खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म। प्रवेश परीक्षा 2083 जेष्ठ 15 गते, समय बिहान 10 बजे। कक्षा सञ्चालन 2083 असार 1 गतेदेखि। थप जानकारीका लागि
9: ब्राइटल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुल, पासाङ लामु रोड, नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081 532 607 530 602।

0: sip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
3: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी हो कराई
2: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
3: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
2: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय हे निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकार्य लाग प्रयास करी वो कराई
3: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
2: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके
4: हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
5: हो र हो नि एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
6: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक *123# डायल गरी वा एनसेल एपमा गई लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
7: यो कृष्ण सार एफएम
8: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज

आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: Krishnasar FM 94 MHz, a complete radio station.
1: यो तरंग रेडियो कृष्णसार को हो।
2: कृष्णसार FM हो, यो कृष्णसार FM।
1: स्टूडियो टाइम चेक।
3: अहिले बिहान को 11 बजे।
1: चोट लागेर वा नलागिकन हुने कुमको दुखाई, कुम चलाउन नसकिने, कुम फुस्किने, कपाल कोर्न लुगा लगाउन नसकिने, हात झम्किने, बल नहुने लगायत कुमभित्रका लिगामेन्ट र मांसपेशी सम्बन्धी समस्याको सही परामर्श र उपचारका लागि
4: डाक्टर तीर्थेन्द्र खड्का, मामा मेडिकल्स, भास्कोटा मार्केट, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि, नेपालगञ्ज। सम्पर्क नम्बर 98 4 80 27 235।
5: का हुई बाबू, अपने कल का लाइट रही, अपने का करे कल का लाइट रही, ले यू भुइया में के हो, का करे भुइया में ढनवा नाल बाटी।
6: सुनि ना दादू, हमरा दुनु जना बन में घास काटायल रहल है, मोर संग में सब पका दल निना दादू, हाली का करना होई, एही ना छटते उपचार के नो पुगाए पहिले से होई रहा।
5: ओहो, ऐसिन बेला में एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के असिया लाग के बैठे नी हुई, यह लगे बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा, फोन कई डारू, अपने नी अटैक ना संघरिया ध्यान दे। हेलो मुकेश, तू जत्ते ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाऊ, यहाँ एक जना बाबू है ना सपवा काट के ना इमरजेंसी पर गिल, तुरंत ही उपचार केन्द्र में ले जाए पड़ल, राजमार्ग 84 मीटर पश्चिम बाव पांचर बाटी ना हमरा। मुकेश जत्ते ही आओ, हाँ सबको काम छोड़ खा।
7: बेटा संतोष, मैं मोटरसाइकिल लेके आएगी नू जत्ते
5: ही। सुनी बाबू, सपो कटलक मने है ना जत्रा साइकिल जत्ते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केन्द्र में ले जा रही पड़ता, ऐसी बेला में सबसे झटते हुई ना यातायात के साधन राजे पर था। यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकले से अपने वो सवारी चालक के बीच में सपो कटलक मने है ना सुरक्षित हुई ना मेर से बैठा कर तुरंत उपचार केंद्र पुगाई पड़ता। तू मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई, मोर भर पर ना संघरिया, मैं तुरंत बेरे में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच में बैठा कर ना उपचार केंद्र पुगा डार हूँ, अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आए।
8: काट करी सांप डसला से मोटरसाइकिल स्वयं से बिबलाई, सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई।
9: यदि समय में जो उपचार कर सकल से सांप डसलक मनिन बचाई सक जिठा, वो यही मसे हुई ना मृत्यु डर फे कम कर सक जिठा, सांप डसलक मने न झट्ट से झट्ट उपचार केंद्र में ले जा डारी, यही ले ऊ मने एक जीवन बचाए भारी मदद कर था। विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग, ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग, आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सक जिठा।
10: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
11: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
12: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि।
13: सुन्नु न, यो हाम्रो बिहे पछिको पहिलो यात्रा हो सिर्फ हामी दुईजनाका लागि।
14: हो त, हात समातेर हिँड्दा संसार अझ सुन्दर लाग्छ, कतै विशेष प्याकेजमा घुम्न जान पाए झन् कति राम्रो हुन्थ्यो, कहाँ होला र त्यस्तो सुविधा खोइ।
13: किन चिन्ता लिएको नि हजुरले, न तयारीको झन्झट, न कहाँ बस्ने अनि कहाँ खाने भन्ने चिन्ता, घुम्ने रुटको सबै व्यवस्था छ, घरदेखि लिएर फेरि घरसम्म पुर्याइदिने व्यवस्था छ, मात्र नेपालगञ्ज न्यू रोड स्थित तुलसी होलिडेजमा। हजुरलाई थाहा थिएन र यो कुरा? मलाई त धेरै पलदेखि थाहा थियो नि।
14: कति बाठी, बिहानको सूर्य, साँझको मिठो हावा, आहा, तुलसी होलिडेजको विशेष प्याकेजमा सस्तो मूल्यमा घुम्न पाउने भएपछि हाम्रो यो यात्रा निकै मिठो अनि रमणीय हुने भयो। उसो भए यात्रा आजै सुरु गरौँ न त। तुलसी होलिडेज टुर्स एन्ड ट्राभल्ससँग आजका लागि मात्र होइन सधैँका लागि सम्झनै पर्ने नाम रहेछ।
13: हजुर, स्वदेश होस् या विदेश, तपाईँ जहाँ जुन देश जान चाहनुहुन्छ टिकट बुकिङदेखि भिजासम्म होटल बसाई र सम्पूर्ण व्यवस्थापन छिटो सजिलो र भरपर्दो छ।
14: साथै परिवारसँग रमाइलो पल, हनीमुनका अविस्मरणीय सम्झना, सफारी, समूह टुर र हरेक यात्रामा खुसीको अनुभव साट्न पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र कहाँ हो र, कर्पोरेट टुर होस् वा शैक्षिक भ्रमण, तपाईँको चाहना अनुसार बनाइदिने विशेष प्याकेजहरू पनि उपलब्ध छन्। अब ढिला नगर्नुहोस्, आजै बनाऊ घुम्ने योजना।
13: सम्पर्क तुलसी होलिडेज टुर्स एन्ड ट्राभल, न्युरोड, नेपालगञ्ज।
14: सम्पर्क नम्बर 9858335553 र 9852235553। इमेल info@tulsiholidays.com।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: होइन, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
1: ओहो बाजे, अब उता आएन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि। हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, चौबिसै घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, चौबिसै घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
2: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-414-007 र 98-482-63-399।
3: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स, जीवनको लागि।
5: बीर डेंटल
6: नेपालगंज शहरमा संचालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेंटलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
7: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत ताउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
6: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक, भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
7: फोन नम्बर 081-532-375।
8: के तपाईँले आफूले प्रयोग गर्ने तोरीको तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईँ आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तेल आफ्नो हातमा लगाई बाँच्न सक्नुहोस्। शुद्ध तोरीको तेलमा नेचुरल राग सधैँ आउँछ र त्यो नेचुरल राग धारा शुद्ध तोरीको तेलमा सधैँ आइरहन्छ। हो, तपाईँले पनि तेलको क्वालिटी आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, सबै तेल धारा तोरीको तेल जस्तै शुद्ध चाहिँ नहुन सक्छ। विगत 3 दशकदेखि नेपालीको मुटुलाई स्वस्थ बनाउँदै नेपालको पहिलो NS चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा, मुटु चाहिन्छ मुटु।
9: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँके के विशेष अनुरोध।
10: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई। कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कै के रोजगारी सृजना करी हो कराई।
9: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसाय के नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई।
10: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू करी।
9: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दी आगे बढ़ाई हो बढ़ाइक लगाई। कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई। एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकार्य लाग प्रयास करी वो कराई।
10: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा।
9: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके।
11: ओहो, आज डाइहा नै मजा लागठो, मजासे दवाई करेना कहटो।
12: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइ न, पश्चिम नेपालके अनुभवी वा उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यही कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंजमा मिलत।
11: ए बाट ठिक कैलो साच्ची की अस्पताल में का सुविधा मिलत
12: वहाँ त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाए छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाए
11: ए ओसिनो कला से उहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह
12: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा

से अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: Toilet Bunny, yeah. Extreme energy drink.
1: खुशी के खबर, खुशी के खबर। हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा डेटी आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा डेटी आयल बा। ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा डेटी रलेक जानकारी कराईटी।
2: जस्तक सर्जरी के सक्कू उपचार, प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कू उपचार, नसा व हड्डी रोग के सक्कू उपचार, मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कू उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाटी रोग के सक्कू उपचार सेवा देती आयल बा।
1: ओस्तक सुगर, ब्लड प्रेशर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो संबंधी सक्कू उपचार, पैथोलॉजी लैब सेवा, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और सक्कू सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी।
2: नोट, ई अस्पताल कार्यरत सक्कू डॉक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चोक नेपालगंज, संपर्क नंबर 081536465, 98239806665 ओ 98482804465।
1: ओहो आज दाई हो नहीं मजा लगा तो मजा से दवाई करेना कहतू।
3: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाई न, पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
1: ए बात तो ठीक कहलो, साच्ची की अस्पताल में का का सुविधा मिलत?
2: वहाँ त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाव उपचार करना संगे NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाए। छोट बच्चा हो, भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सक्कू प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाए।
1: ए ओसिनो कला से वहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह।
2: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा, संपर्क नंबर 081535717। कान्ति आरोग्य अस्पताल, अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमार स्नेहा।
1: कान के समस्या बा, उपचार करायला कहाँ ले जिदा हो?
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाई न, वहाँ ता अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुईत, ओतरकेल कहाँ हो? वहाँ तो लंबा समय से कान पक्ति रहना, जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान खजोइना, कान कम सुनना, कान दम्मा हुईना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुई। वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए। जस्ते BTE, CIC, RIC जैसी मशीन फे वहाँ मिलत।
1: ए ओसिड हो कला से बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ता।
2: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा। बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ, फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने, राप्ती रोड बांके, संचालक पूरन चौधरी, संपर्क नंबर 98482697, 98582697 ओ 98014 86697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी।
4: छोटो समयमा धेरै संस्थामा डाक्टर इन्जिनियर तथा सिए बनाउन सफल पेन्टागन कलेजमा कक्षा 11 को लागि विज्ञान व्यवस्थापन तथा कानून संकायमा भर्ना खुल्यो। पेन्टागन कलेज तिनकुने काठमाडौँ।
5: के तपाईँ आफ्नो भविष्यलाई प्र्याक्टिकल एजुकेसनसँग जोड्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने अरुणोदय बोर्डिङ हाई स्कुलमा अब कक्षा 11 होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययनका लागि भर्ना खुलिसकेको छ। यहाँ विद्यार्थीहरूले केवल किताबबाट मात्र होइन व्यावहारिक अभ्यास मार्फत पनि सिक्ने अवसर पाउँछन्। मोडर्न किचन प्र्याक्टिकल, हस्पिटालिटी ट्रेनिङ, स्किल्ड टिचर्स एन्ड डिसिप्लिन्ड लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट अब एकै ठाउँमा।
6: आजको समयमा सर्टिफिकेट मात्र होइन स्किल पनि आवश्यक छ। आजको समयमा सर्टिफिकेट मात्र होइन स्किल पनि आवश्यक छ। त्यसैले अरुणोदयले विद्यार्थीलाई विश्व स्तरको प्र्याक्टिकल एजुकेसन प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
5: यदि तपाईँ हस्पिटालिटी सेक्टरमा सफल करियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै भर्ना सुनिश्चित गर्नुहोस्। सिट सीमित छन्। अरुणोदय बोर्डिङ हाई स्कुल, खजुराचार, बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-560-143 र 98-580-20-819।
6: एउटा राम्रो विद्यालयले केवल पढाइ मात्रै होइन बच्चाको भविष्य पनि बनाउँछ।
5: नेपालगञ्जको बिपी चोकमा अवस्थित जीबीएन सेकेन्डरी स्कुल गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासित वातावरण र अनुभवी शिक्षकहरूको उत्कृष्ट संयोजन हो। यहाँ विद्यार्थीलाई पुस्तकको ज्ञान सँगै संस्कार, आत्मविश्वास र जिम्मेवार नागरिक बन्ने शिक्षा दिइन्छ। आधुनिक शिक्षण विधि र सुरक्षित वातावरणका कारण जीवीएन अभिभावकहरूको पहिलो रोजाई बन्न सफल भएको छ।
6: यदि तपाईँ आफ्ना नानीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि विश्वासिलो र उत्कृष्ट विद्यालय खोजिरहनु भएको छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस् जीवीएन सेकेन्डरी स्कुल, बिपी चोक, नेपालगञ्ज।
5: शिक्षा र सफलताको पर्याय जीवीएन सेकेन्डरी स्कुल। सम्पर्क फोन नम्बर 081-531-570।
7: भर्ना खुल्यो।
5: होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 भर्ना खुल्यो।
8: हजुर, कम्प्युटर व्यवस्थापन, विज्ञान तथा होटल म्यानेजमेन्ट संकायमा नयाँ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ।
5: नेपालगञ्जमा विगत 21 वर्षदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रावास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ।
9: फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहेन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
5: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको छ है।
9: होप इन्टरनेशनल एकेडेमी, गुणस्तरीय शिक्षाको भरपर्दो आधार।
5: थप जानकारीका लागि
9: सम्पर्क नम्बर 081-551-462, 98-580-24-462, 98-580-20-645। ठेगाना होटल रोयल बाँकेको पूर्वतिर, नेपालगञ्ज, बाँके।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 1 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: मुन्तारा इङ्ग्लिस मिडियम हाई स्कुल नेपालगञ्ज बीच राजामा नयाँ शैक्षिक सत्र 2083 लागि भर्ना खुल्यो। वैशाख 8 गते हुने प्रवेश परीक्षामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने विद्यार्थीलाई क्रमशः 75%, 50% र 25% छात्रवृत्तिको सुविधा छ। आजै सहभागी हुनुहोस्। विशेषताहरू: अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक टोली भएको प्रविधि मैत्री शिक्षा साइन्स र म्याथ ल्याब, बाल मैत्री वातावरण भएको, अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड, सुरक्षित र अनुशासित वातावरण भएको। आजै आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोस्।
2: सम्पर्क फोन नम्बर 98 84 46 291।
1: मुन्तारा इङ्ग्लिस मिडियम हाई स्कुल नेपालगञ्ज बीच राजा।
3: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
4: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
3: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
4: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98 84 20 697, 98 85 23 697 और 98 014 83 697।
3: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहां सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
5: भर्ना खुल्यो।
6: होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 भर्ना खुल्यो।
5: हजुर, कम्प्युटर व्यवस्थापन विज्ञान तथा होटल म्यानेजमेंट संकायमा नयाँ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ।
6: नेपालगञ्जमा विगत 21 वर्षदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रावास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ।
7: फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहेन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
6: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको
7: होप इन्टरनेशनल एकेडेमी, गुणस्तरीय शिक्षाको भरपर्दो आधार।
6: थप जानकारीका लागि
7: सम्पर्क नम्बर 081-551-462, 98-580-24-462, 98-580-20-645। ठेगाना होटल रोयल बाँकेको पूर्वतिर नेपालगञ्ज बाँके।
3: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
4: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा होता रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती,
5: कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
5: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ है। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
3: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
5: संपर्क नंबर 081536465, 98249806665 और 98482804665।

हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार। कार्यक्रम चना जोर गरम सुनने वाले सब यार दोस्त का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। हाँ तो साथी, आप लोगन की दुकान मकान खेत खरियान डाल पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर घूमा टहरा थम मियाँ जी आ चुके हैं पराधिक में जो सदा साथी राज भी हमरे चंदा जी। हाँ तो साथी, आज के कार्यक्रम में यहाँ जो आप लोगन के यहाँ जो फिल्मी दुनिया के जो क्वेश्चन रही सिंगर के और फिल्म के नाम पूछा बताई वो बतावा जी, जो हम पूछा वो का बताओ जी बतावा ले साथी का पुरस्कार दिया जी। तो साथी ऐसे जैसे आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए सुना 84 15 122 के लिए नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970 81 415 122 के लाइन में कार्यक्रम के यहाँ जो देश दुनिया में पटोरा ले एडियो वीडियो हमरे प्रावधिक में यहाँ जो जिगरी साथी चंदा जी हैं। हाँ तो हम आप लोगों से यही कहते हैं कि आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए। तो आज के कार्यक्रम के परायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी, ज्योति टेलर जो सदर लाइन वार्ड नंबर 4 नेपालगंज डाके में है, जहाँ सब मेरे के लेडीज सड्डा पीस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार सब मेरे के कपड़ा सेट है, वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जी। तो साथी आज के कार्यक्रम में आप लोग मैसेज में यहाँ फ़ोन में यहाँ पत्र में जो भी अपने अवधि हिंदी भोजपुरी भक्ति भजन नाथ कवाली जो भी अपने मन पसंद के गाना सुने का है तो फ़ोन में भी वो मैसेज वगैरह में सब आप पठाई सका जाता है। आपके सामाजिक गाना जैसे अवधि हिंदी भोजपुरी भक्ति भजन नाथ कवाली ये नहीं कि अब गाना के आवाज़ हम यहाँ तू बतावा जाए तो उसका हम नाम ना ले पाई वो मेरे गाना ना है, सामाजिक गाना पठवा जाए जो समाज में हर लोग कहे वाह गाना बहुत अच्छा चॉइस की ने। तो साथी पहला नंबर में गाना है तो बा कैसे है नदान घुंघरू पायल की एक दिन लेगी मेरी जान, घुंघरू पायल की कौन फिल्म हो कौन गायक लोग गाना का गए नहीं। इसे दूसरे नंबर में है तू नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना, कौन फिल्म हो कौन गायक लोग गाना का गए नहीं, दोनों का सही उत्तर दिया जाए तो उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार लाखों करोड़ों के बीच में हम लोग एकदम हंसी खुशी के साथ में उनका रेडियो में बुलाए के उनका यहाँ से कूपन बनाए के उनका पठवा जी। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए सुने 81 415 122 के लाइन में आवा जाए। कार्यक्रम सोमवार के 1 बजे से 3 बजे तक रहत है और कार्यक्रम तो 6 दिन के है जैसे सब मेरे कार्यक्रम है, कार्यक्रम अब सब चलत हैं। साथी आप लोग जो अभी अभी नहीं जान पाओगा पुराने कार्यक्रम सब आए गए हैं, नाम भी बदलगा कार्यक्रम सब वही पुराने आएगा है। जैसे आज सोमवार के कार्यक्रम आप लोगन के चना जोर गरम मियाँ जी के साथ में सुना जाता है, काल बुध मंगल है आप लोग अपने माने जाने हुए जो बहुत पुरान संचालिका चंदा जी हैं जो डबल ड्यूटी में रहते हैं, जैसे उधर प्राइवेटिंग में भी रहते हैं उधर परसोता आरजे भी हैं यानी रेडियो के परसोता भी हैं। तो मंगलवार के चंदा जी के है, फिर बुधवार के चंदा जी के बीफे के फिर मियाँ जी के है, जिमा आप लोगन का प्यारा प्यारा कव्वाली से कार्यक्रम का चली वहाँ क्वेश्चन रही वो मैं यहाँ ऐसे सुख के तो आप लोगन के लिए भी सबसे जाना जाता है कि विदा है शनिवार से लगाए के आपके बीफे तक कार्यक्रम पूरा पैक है। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जी तो ऐसे मैसेज आप लोगन के पठवा जाए 98 55 96 306 में मैसेज भेजा जाए, कैसे मैसेज आप लोगन के आई तो ये मैसेज आएगा है, मैसेज भेजे वाले हैं संगम टेलर से मैसेज भेजे नहीं है, मैसेज भेजे वाले हैं कृष्णा परियार जी ने लिखने सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है और ईद मुबारक, तो आपका भी ईद मुबारक है कृष्णा जी। तो कहने हमका गाना सुना दिया जी, कबले छुपैबा सुरतिया पिरतिया जवान हो गई। हाँ खैर गाना बहुत अच्छा चॉइस करी ने कृष्णा जी। साथी हैं सुभाष हैं, मोहम्मद अफरोज खान हैं और तमाम साथी हैं और चिन्हे जाने वाले सब लोगन का ऐसे दोसर मैसेज आवा है, मैसेज भेजी ने वर्मा जो वर्मा स्टूडियो जो के बगल में यहाँ जो हमरे अंकित जी लिखी ने सबसे पहले मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है इन्हों कहने की कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी, आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है हमका अंकित कह के चिन्हे जाने वाले सब लोगन का सुनाव चाहते है।
ऐसे जो अमेरिका कांदू जो त्रिवेणी मोड़ जो चाट भंडार से मैसेज भेजी ने इनू कहने की मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है इनू कहने कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी। गाना सुने वाले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहते विशेष कहके राजू कांदू के यहाँ और तमाम साथी लोगन का सुनाओ चाहते। ऐसे दोसर मैसेज है मैसेज भेजी ने हंसराम साहू जय भुजई गांव से लिखी ने सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है इन्हों कहने कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी। आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है उदी भाषा के आपके बोली बहुत अच्छा लागत है धन्यवाद है हंसराम साहू जी। तो साथी ऐसे आप लोग नबी नंबर में जुड़ा जाए सुने के 8415 के लाइन में ये कार्यक्रम 1 बजे से 3 बजे तक आप लोगन के फुल टाइम है। तो साथी माँ आप लोगन का एकदम 3 बजे तक बिंदास के साथ कार्यक्रम का सुना जाए फ़ोन भी किया जाए मैसेज भी पठवा जाए सामाजिक गाना भी लिख कर पठवा जाए। तो साथी अब हम चली थे पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन। विज्ञापन के बाद में यहाँ आप लोग सुना जाए प्यारा से गाना। व्यापारी विज्ञापन के बाद में प्यारा से गाना कबले छुपेबा प्रीतिया हाँ जो हमरे संगम टेलर के जो हमरे कृष्णा जी के फरमाए। तो साथी नंबर में जुड़े रहा जी रेडियो के साथ ही रहा जी।

0: जे अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान।
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवन को लागी।

0: को मेरा दिल ना लगना, कौन फिल्म है, कौन गायक लोग गायन है?
1: अब मियाँ जी हम इस फिल्म और गाना तो हम जानते हैं।
0: हाँ तो तब और बताओ ना, जब जानी ना पई हो तो बातें खत्म है नहीं।
1: इसका ना बताए तो गाना सुना दिन जाए बढ़िया तरीके।
0: कौन गाना?
1: अरे दोनों सुना जो बढ़िया अपने हिसाब से, वही मुकदमा चलेगा या फैसला अदालत का।
0: अच्छा उम्र कैद होगी क्या है, फैसला अदालत का है?
1: हाँ हाँ
0: ठीक है, तो गाना सुनाई हो किका किका?
1: और सबसे पहले आपका
0: धन्यवाद,
1: और चंदा जी का, संध्या जी का, पूरे एफएम स्टाफ जो है सबका, और जो हमारे नाम से परिचय है।
0: हाँ देश विदेश में जो सुना थे जाना थे सबका है नहीं। ठीक है गोमती जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ साथी गोमती प्रसाद वर्मा रहे जानकी गांव पालिका 3 बंजारे गांव से। गाना उम्र कैद होगी क्या है, फैसला अदालत की, चले गई मुकदमा यारो आज ये मोहब्बत के। हमका लागत है हमरे गोमती जी मोहब्बत में फंसे हैं, इसे थोड़ा ही दर्द भरा गाना सुना चाहते हैं। तो ठीक है हम कोशिश करबे गोमती जी, तो ऐसे सुने कैसी 4-15 एक से बहस के लाइन में साथी आवाजी कहे से आप लोगन के प्यारा कार्यक्रम है। तो ऐसे मैसेज भेजे वाले साथी हैं खलील अहमद बेहना जो परसिया से, इन्हों लिखी ने सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है ये कहने आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, आपके कार्यक्रम के जितना भी तारीफ किया जाए उतने कम है। तो मियाँ जी हमका गाना कोई अपने मन पसंद के सुनाए दिया जी। ठीक है हम आपका मन पसंद के सुनाए देव, कहने हमका खलील कहके चिन्हे जाना ले सब लोगन का सुनाव चाहित है। ऐसे दूसर मैसेज आवा है, मैसेज भेजे वाले साथी हैं जैसे मैसेज भेजे हैं सुंदर रैदास लालपुर बर्दिया से। हाँ ये कहने कि मियाँ जी लिखी ने कि मियाँ जी बेढ़ा में यहाँ पानी चलावा जाते है, रेडियो बिरवा के तरह बैठे सुना जाता है आपके कार्यक्रम। हम लोगन का आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, और हमका लोगन का गाना सुना दिया जाए खींच के मार दिन

महीना में हमरे भद्रा जी जीके कार्यक्रम में फोन कर तो उसमें पहाड़न के सुनत है चंदा जी आपो के तो यही गाना के फरमाइश करा थे उसमें पहाड़ों का। ठीक है भद्रा जी तो कहने हमका गाना सुना दिया जी राम तेरी गंगा मैली के गाना हो भद्रा जी उसमें पहाड़ों का कहने फिल्म के नाम नहीं गाना के नाम मालूम है। ठीक है ऐसे दूसर मैसेज आएगा मैसेज भेजे वाले साथी हैं ये लिखी ने सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम तो वालेकुम अस्सलाम मुबारक खां जो इस सऊदी से मैसेज भेजे ने इनके नेपाल के ठिकाना है रजनवा 5 बाकेमा खजुरा गांव पालिका आए अपने घर परिवार का सबका सुनाओ चाहिए अपने पापा महमूद खां का लौंडा हसनैन खां बैदू गोमती और सुरेश और तमाम साथी लोगन का सुना चाहिए। तो साथी अब हम चली थे फिर छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के तरफ विज्ञापन के बाद माँ आप लोग सुना जाई उम्र कैद होगी क्या है फैसला अदालत की चलेगी मुकदमा यारो आज ये मोहब्बत की

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2397 और 98014-83697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
2: आगामी शैक्षिक सत्रका लागि नर्सरीदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुल्यो।
3: अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक मार्फत विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिँदै आइरहेको होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना खुल्यो। नेपालगञ्जमा विगत 23 वर्षदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रवास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ। फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
2: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको छ।
3: होप इन्टरनेशनल एकेडेमी, गुणस्तरीय शिक्षाको भरपर्दो आधार।
2: थप जानकारीका लागि सम्पर्क 081551462, 98584462 र 98582046।
4: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ।
5: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: रेडियो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जस्तेज।
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
2: सुना जाए आपका, हम बताई थे आप नेपालगंज में ही अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाता है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
2: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808245437।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो।
1: आ रेडियो लिए घूमत हो।
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे फिल्म से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृषि सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे कि राव मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो के सारे एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

0: हाँ तो श्रोता, एक छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, 2 बजे के टाइम चेक के बाद में आप लोगन का फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। तो आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415-1 के लिए नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970 कैसी 415-1 के लाइन में आओ जी। हाँ श्रोता, आप लोग सुनाया थे आप ही के प्रिय रेडियो किसी सारे फेम 94 से जो कार्यक्रम चलत है चना जोर गरम, जिका लेके आप लोगन की दुकान मकान खेत खरियान डाल पार देश विदेश यानी हर जगह पर चलत है। हाँ तो साथी, कार्यक्रम में यहाँ आप लोगन का जो भी अपने मन पसंद के गीत, अवधि, हिंदी, भोजपुरी, भक्ति, भजन, नाथ, कव्वाली जो भी सुने का है, तो आप 9815-96-36 में मैसेज किया जी। मैसेज में यहाँ आपके जो भी गाना आए, आपके जो भी बात आई, सामाजिक बात लिखा जी, कैसे समाज की बात है जो आप अनोसनो लिखा जाए, तो का हम ना पढ़ पाए ना का हम बोल पाए, और जो सामाजिक लिखा जाए तो का हम हंसी खुशी के साथ माँ और अच्छे से पढ़वे, तो का जो बड़े बूढ़े माँ बहने बिटिया बहू सब एक जगह पर बैठ के सुने रेडियो का कहें कि आवाज़ और बढ़ाए दो, और ये बात ना लिखा जाए कि रेडियो बंद कर दो फिर का वक्त है, का है, कौन गाना है, फलाने धमाक है। तो इसके मारे हम आप लोगों से यही कहते हैं कि आप लोग सामाजिक गाना पठवा जाए। तो पहला क्वेश्चन जो है, तो साथी क्वेश्चन का सुनते रहा जी, और ये कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी, ज्योति टेलर जो सदर लाइन वार्ड नंबर 4 माह है, वहाँ से आपका जहाँ सब मेर के लेडीज जेंट्स अड्डा पीस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार यानी सब मेर के कपड़ा हासियत है, वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जी। तो ऐसे पहला नंबर में गाना है, आप लोग एकदम ध्यान से सुना जी, पहला नंबर में गाना है जो तोबा कैसे है नदान घुंघरू पायल की एक दिन लेगी मेरी जान घुंघरू पायल की। 2 नंबर में गाना है, आप लोग एकदम ध्यान से सुना जी, तू नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना। हाँ ये दोनों गाना के सिंगर के नाम, फिल्म के नाम आप बतावा जाए, आपका एकदम हंसी खुशी के साथ में लाखों करोड़ों के बीच में आपका पुरस्कार दिया जाए। तो इसे जो हमरे मैसेज भेजने हैं, मैसेज भेजे वाले साथी हैं, लेकिन सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार, तो नमस्कार है। इनके ठिकाना है खजरा गांव पालिका वार्ड नंबर 4 बठवा, बठवा से जो मैसेज भेजी ने, मगर आज काली दोहा कतार माँ है, नाम इनके राम बिलास यादव है, कार्यक्रम की तारीफ भी की ने, कहने हमका गाना सुनाई दिया जी मियाँ जी, अपने मन पसंद के जो भी गाना सुनाई दिया जी, सामाजिक गाना गाना सुनने वाले हैं अहमद चाचा गोरखपुर के हैं, ऐसे बबलू हैं और तमाम साथी हैं, गुलजारी हैं और साथी लोगन का सबका मियाँ जी आपका धन्यवाद है। ऐसे पेट्रोल पंप खजुरा बाजार 4 से जो मैसेज भेजी ने बिंदुश्री ठाकुर जी, नीतू हेयर कटिंग सैलून से ये लिखी ने कि मियाँ जी आपके कार्यक्रम जो आवत है उसका हम लोग भी बहुत प्यार प्रेम से सुना जाते हैं, आपके कार्यक्रम के तारीफ भी किया जाते हैं, जितने तारीफ किया जाए उतने कम है, यही भगवान से अर्ज किया जाता है, अर्थना किया जाता है कि आपके बहुत लंबी उम्र होए और आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा है, आपके जिंदगी बढ़े, सूरज चांद जब तक रहे तब तक आपके नाम रहे, धन्यवाद है। तो इन्हों कहने कि हमका गाना सुनाई दिया जी, कबले छुपैया सूरतिया प्रीतिया जवान हो गई, ये गाना सुनाई दिया जी। ठीक है, हम आपका ये गाना ज़रूर सुनेबे। ऐसे दूसर मैसेज आएगा है, मैसेज भेजे वाले साथी हैं बशीर शेख, मैसेज भेजी नहीं है चौलिका चौक से, ये लिखी ने सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार, तो नमस्कार है, ये कहने आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है और हम लोग बहुत प्यार प्रेम से कार्यक्रम का दोपहरी में सुना जाते हैं। हाँ तो साथी, आप लोग दोपहरी के कार्यक्रम ही है, कार्यक्रम आपका शनिवार से इतवार तक एकदम, शनिवार से आपका बीफे तक पूरा कार्यक्रम पेक है, जैसे शनिवार के संध्या चंदा जी कार्यक्रम चलावत हैं, फिर इतवार के चंदा जी चलावत हैं, मंगल के चंदा जी चलावत हैं, बुध के चंदा जी चलावत हैं, कार्यक्रम के यहाँ बीफे और सोमवार के हम चले थे कार्यक्रम, आप लोगन की खाली नहीं है, कार्यक्रम पूरे पेक हैं, कार्यक्रम वही जो आप लोगन की इच्छा रहा है वही पूरा होगा है, साथ ही जो मांगागा उका पावागा, तो आप लोग भी ध्यान प्रेम से कार्यक्रम का सुना जाए। तो ये कहने कि हमका बशीर के चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाव चाहिए है। ऐसे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजे वाले हैं अलसंदी टेलर परसपुर भाके से मैसेज भेजी नहीं लिखी। सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है ये कहने आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है। कोई साथी हमारे फोन लेना है, पहले उनका स्वागत कर ली। नमस्कार।
1: नमस्कार, सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, और अपना बताइए क्या है नाम?
1: हमारा भद्रा सिंह सिरपाली सी गाँव से।
0: भद्रा सिंह सिरपाली
1: जी।
0: ए भात खाए पेट में गयो था, अब भाई गयो तिम्रो खाली थाली।
1: हजुर।
0: भात खायो पेट में गयो, भात खायो पेट में गयो, अब तिम्रो भाई गयो खाली थाली।
1: भात खाए ना आज कटर को सब्जी और रोटी।
0: ए आजा
1: थोड़ा सा दी पन्नियो भात।
0: आजा कटहर खा को।
1: हाँ कटहर को सब्जी और थोड़ा मसूरा को दाल।
0: ए मसूर को दाल, कटहर को त्यू नहीं ना?
1: हजुर।
0: कति मीठो खाना है ना?
1: हाँ चटनी भएन, चटनी टमाटर को भैया खूब मजा आउँछ।
0: मेरे मुख में तो पानी आयो। कहाँ थियो कटहर?
1: आज राजेपुर फार्म बाट तोडेर ल्याथे। डबल समझेर के
0: त्यो पहिला बचपन को कुरा अहिले पनि छ?
1: हजुर।
0: नहीं नहीं
1: धनबहादुर हुई चौकीदार छ
0: को?
1: धनबहादुर हुई चौकीदार।
0: धनबहादुर छ चौकीदार ते? त्यो धनबहादुरसित कुरा मलाई कोही टाइममा गराइदेऊ न।
1: हुन्छ हुन्छ।
0: तपाईँ फटाहा
1: छ, तपाईँको नम्बर दिएछु न धनबहादुरलाई।
0: त फोन त गरेन धनबहादुरले हामीलाई।
1: भुल्यो होला, भुल्न पर्छ।
0: अब सँगैको हुर्क्यो, खेल्यो, पढ्यो, लिख्यो सबैजना, गाई गोठाला, भैँसी गोठाला, घाँस दाउरा सँगै गरेको मान्छे त याद आउँछ नि?
1: किन याद आउँदैन? राजेपुरमा काम गरेको पनि याद आउँछ
0: सबै कुरा।
1: माछा तलाउमा चिप्पा लगाएको
0: सब थाहा। भद्राजी
1: हजुर,
0: तपाईँ क्वेसनको उत्तर दिनु त?
1: क्वेसनको उत्तर त पढेको छैन त, पढेको भइदिया भए या हिरो भइदिया भए तपाईँ आउँथ्यो नाम
0: हा?
1: या पढेको भइदिए आउँथ्यो या हिरो भइदिया भए तपाईँ गायककारको सबको नाम आउँथ्यो।
0: ए त्यो मैले जो गीतको क्वेसन राखेको छु त्यसको उत्तर दिनु हुँदैन त?
1: नै आउँदैन, आउँदैन मियाजी।
0: थालभरि भात खान आउँछ मात्रै यो किन आउँदैन त?
1: भात पनि धेरै खान सक्दैन, दुई पन्ने मात्रै हो भात खान।
0: एउटा बटको मात्रै, एउटा बटकोमा पेट पनि भर्दैन भनिरहेछ भद्राको। त ल त अब अहिले बज्ने गीत कसलाई सुनाउने? आफ्नो साथी भाइ सङ्गीको नाम
1: रोज्न पाइन्न गाना?
0: रोज्नु रोज्नु भन्नु।
1: ऊ गङ्गा किनारे देश हमारा है कि क्या है?
0: गङ्गा किनारे मोर गाउँ रे घर पहुँचा दे देवी मैया।
1: हाँ जी
0: ये गाना।
1: हाँ
0: आज राम तेरी गंगा मैली को हुस्नु पहाड़ो कहाँ गयो? दुनिया संसारै भन्छ मन्नु लैला मन्नु जस्तै भद्रा पनि दिवाना छ त्यो हुस्नु पहाडको गीत।
1: हजुर।
0: ल म गङ्गा किनारे मोर गाउँ घर पहुँचा दे देवी मैया, म कोसिस गर्छु है।
1: हजुर हजुर।
0: तपाईँको मैसेज पढेको तिमी सुने छौ सुने छैनौ?
1: हजुर।
0: अहिले मैसेज पढे त्यो एकछिन पछि, पहिले मैसेज सुन्नु भएन त? सुने थियो
1: हजुर।
0: त्यही मैले राम तेरी गङ्गाको त चर्चा गरे थिए।
1: हजुर हजुर।
0: त्यो धनी रामसित कुरा गराउनु है?
1: हवस् हवस्।
0: कुन खेर कुरा गराउने?
1: म भन्छु, यहाँबाट फोन गर्छु त्यसलाई।
0: ए ल त धनी रामलाई पनि म सुनाउँछु गीत है।
1: हजुर हजुर।
0: ल त नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नमस्कार।
0: हाँ साथी, सी गांव खजुरा गांव पालिका सी गांव एक से भद्रा सिंह सिरपाली रहा है, मगर अब का करें, गहने गंगा किनारे मोर गांव हो, घर पहुंचा दे देवी मैया, जानवान नहीं पाते गंगा गंगा गंगा के नाम के गाना तो बहुत रहा है। तो अब हम चली थे पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, उसके बाद माँ सुना जी प्यारा से गाना, कबले छुपैया सूरतिया प्रीतिया जवान हो गई।
2: अब सुनोस श्री स्टील्स रेडियो कथा तेस्रो तथा अंतिम भाग। शर्माजी को घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको हुन्छ, झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ, बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ, सब धेरै डराएका हुन्छन्, तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ। शर्माजीले श्री FE550D ले बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन, अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ। अनि वर्षौँ पछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ। श्री FE550D

0: हाँ तो श्रोताई जो प्यारा से गाना सुना गा, खैर गाना आप लोगन का बहुत अच्छा लाग हुई। तो साथी इसे आप लोग नंबर में आ जाए सुने कैसी 415-122 के लाइन में आ जाए। कार्यक्रम जो आप लोगन के आप के प्रिय रेडियो किसी सारे फेम 94 MHz से चलत है। तो श्रोता आप लोग एकदम कार्यक्रम में यहाँ जो भी अपने मन पसंद के अवधि हिंदी भोजपुरी भक्ति भजन नाथ कवाली आज के दिन माँ और अगले दिन में तो नहीं है, आज के दिन में आप लोग गन के यहाँ जो भी गाना सुने का है सामाजिक गाना वो आप चॉइस करके गाना का पठे भी दिया जाए तो फ़ोन में कह के बताए भी दिया जाए। तो साथ ही ऐसे आप लोगन से ये कहते हैं कि जैसे हमारे हाथ में मैसेज आ रहा है जिला भारत उत्तर प्रदेश भारत से जो मैसेज भेजना है इश्तियाक खान जी जो बख्शी गांव नवाबगंज अलियाबाद से, ये कहना कि मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम। ये कहना कि हमका हमरे गाना मैसेज पठवा रहा है तो आप पावागा या नहीं पावागा मैसेज आपके हमका मिला रहा है। तो इन्हों कहना कि हमका कव्वाली सुनाए दिया जी, ए हज को जाने वाले मुबारक हो ये सफ़र घर छोड़ के चले हो अल्लाह के नाम पर। तो आपके मैसेज में हम गाना एक कव्वाली बजाए भी दिया है, आप सुना गाओ या ना सुना गाओ इश्तियाक खान जी। तो कहने की सबका हमारे तरफ से ईद मुबारक है बकरा ईद के सब लोगन का आपके पूरे टीम का, तो आपका भी हमारे तरफ से हमारे टीम के तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आपका भी है। आज कव्वाली हम आपका सुनेबे जैसे हमरे राजीव मौर्या जो वार्ड नंबर 14 भवानी बाग से मैसेज भेजी ने लिखी ने सर्वप्रथम संचालक मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम नमस्कार दसंगरी जोर के जय गुरुदेव। तो जय गुरुदेव है आपका भी कहने कि मियाँ जी आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है हमका कव्वाली सुना दिया जी, ए हज को जाने वाले मुबारक हो ये सफ़र घर छोड़ के चले हो अल्लाह के नाम पर। सोनू निगम के आवाज़ में एक कव्वाली सुना दिया जी, हमका राजीव मौर्या कहके चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाव चाहिए थे। धन्यवाद है राजीव मौर्या जी, आपके भी मैसेज बहुत अच्छा है, लिखे में राइटिंग भी अच्छा है, आपके शब्द भी अच्छा है, लिखा गया है छोटा मगर बहुत मीठा आवाज़ है। ये कहने कि मियाँ जी आपके कार्यक्रम हमका बहुत अच्छा लागत है, आपके तारीफ भी करे थे, भगवान से यही कामना कि मियाँ जी के हमरे बहुत लंबी उम्र हो। और कहने कि हमरे मियाँ जी जो कार्यक्रम के परसोता हैं उनका बस यही दुआ दिया थे कि एकदम खुश रहें आबाद रहें, चाहे नेपाल में रहें चाहे इलाहाबाद रहें। इलाहाबाद जी में भैया तब तो हम कार्यक्रम बहुत चला बहुत कर रहा पर जी बहुत टैक्स काटी उधर रोमेट लागत है। तो ठीक है हम आपका कव्वाली हम सुनाए देवे, हज को जाने वाले मुबारक हो ये सफ़र घर छोड़ के चले हैं अल्लाह के नाम पर, या कोई भी कव्वाली हम आपका सुनेबे। तो साथी अब हम चले थे पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, कैसे विज्ञापन भी जरूरी है हमारे श्रोता लोग जो विज्ञापन दाता लोग हैं, अगर वो विज्ञापन ना सुनिए तो हम लोगन का बहुत परेशान कही मियाँ जी हमारा विज्ञापन नहीं बजाए। हाँ अगर आप लोगन का अपने अपने दुकान मकान खेत खरियान यानी कोई उद्यम रोजगार के एडवर्टाइज करावे के यहाँ है खूब अच्छे से तो आप लोग भी नंबर माओ जी 98481107778 में फ़ोन किया जी, आपके विज्ञापन हम लोग अवधि हिंदी भोजपुरी भक्ति भजन अवधि नेपाली थारू सब भाषा में हम लोग बनाए दिया जी। तो हम चले थे पहले व्यापारी विज्ञापन तरफ।
1: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना
2: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा

0: रोग अभिशाप न होए इके उपचारों भी संभव है। वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है।
1: शरीर में यहाँ न खजवाए, छुए से जान न मिले, लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जाते। असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के यहाँ दिखाए तो जुड़तीन स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है।
0: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई किए से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ शारीरिक अपांगता होए से भी बच सका जात है।
1: जानकारी रहक चाहिए कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाके द्वारा जनहित में जारी संदेश।
2: हाय के गर्ने होला अब, सुगर पनि बढ्दै छ, थायराइड को समस्या अझ छुट्टै छ, कति ठाउँमा देखाए तर भएन।
3: ए तिमी यति चिन्तित किन, के भयो फेरि?
2: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोन को समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
3: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
2: कस्तो खबर?
3: अब प्रत्येक दिन सुगर थायराइड तथा हार्मोन रोग का विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही MD इंटरनल मेडिसिन TU एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
2: ए साच्चै?
3: अझ सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
2: ए त्यो त झन् राम्रो
3: हो नि। डाक्टर पूनमाचारी MBBS MD KU IVF स्पेशलिस्ट इंडिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई MBBS MS KU वरिष्ठ कंसल्टेंट जनरल तथा लैप्रोस्कोपिक सर्जन बाट सेवा पाइन्छ।
2: वाह, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
3: अझै अरु सेवाहरु पनि छन्, दैनिक ओपीडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, ECG तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
2: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
3: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आज गइहाल उपचार गर्न।
2: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर BP चोक नेपालगंज, फोन नम्बर 081-531-860 र 081-531-861।
3: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।

0: अम्मा के दवाई करावे के, लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
1: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
0: अच्छा, मने अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
1: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जलेक घाव के उपचार करे के साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
0: अस है तो अम्मा के यहाँ आजे लेके जायत हैं, कांति आरोग्य अस्पताल में यहाँ।
1: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

हाँ तो श्रोता आपका क्या जाए कार्यक्रम के एकदम अंत में हम तो साथी अब हम आप लोगों से यही कहते कि अब एकदम समय कहते हैं जल्दी से मियाँ जी अपन बोरिया बिस्तर समेटा जाए कोई दूसरे के पाला अब आए वाला है। तो साथी अब आज के कार्यक्रम जो हम यही समाप्त करे कोशिश करे थे तो साथी आप लोग अतिशय जो सुनागा आप के प्री रेडियो किसी सारे फेम 94 मेगाहर्ट्ज़ से जो चला कार्यक्रम चना जोर गरम ये कार्यक्रम आप लोगन के बीफे के फिर 1 बजे से 3 बजे आप लोग का ऑडियो वीडियो में दोनों सुना देखा भी जाते। तो साथी ऐसे 1 बजे बीफे के फिर मुलाकात करवे तो आज के कार्यक्रम जो आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ के सुनागा आप लोगन का बहुत दिल से धन्यवाद देते कार्यक्रम के प्रायोजक जो हमरे जफरुद्दीन पप्पू जी ज्योति टेलर के रहे हैं उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद देते है। आई कार्यक्रम का ऑडियो वीडियो में दोनों का विश्व में संसार में हर जगह हर देश दुनिया में पठवाले जो हमरे साथी पराधी में 2 घंटा पूरा 7 दिन दिल लगाए के हमरे चंदा जी उनका भी बहुत बहुत ढेर से घर शुभकामना और धन्यवाद देते है। और आप लोग जो अपने अपने जगह पर बैठ के सुनागा आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते। तो साथी आज के कार्यक्रम के जो सिंगर के फिल्म के नाम कोई सही गलत नहीं सही नहीं बताई से आज के विजेता कोई नहीं भवा है। तो साथी कार्यक्रम अगले सोमवार के जब ये कार्यक्रम चली तो इका हम फिर रखबे और आप लोग के समझ में तो आज के कार्यक्रम में यहाँ प्यारा से गाना के साथ ना तोबा कैसे है नदान घुंघरू पायल की छोड़ते हैं हम संचालक परसोता मियाँ जी आप लोगों से विदा ली थे खुदा हाफिज अस्सलाम वालेकुम नमस्कार।

0: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
1: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि
2: बीर डेंटल
3: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछानी द्वारा

0: आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे QR, नेपाल का अपने QR।
1: व्यवसायिक कृषि पद्धति अपनावे के खातिर कृषक वर्ग के यहाँ कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केंद्र खजुरा बाके के विशेष अनुरोध।
2: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसायिक पद्धति अपनाए के आय मूलक व्यवसाय मार्फत आत्मनिर्भर बना जाए और बनावा जाए। कृषि पेशा के यहाँ मर्यादित बनावे उद्यमशील विकास कई के रोजगारी सृजना करा जाए करावा जाए। कृषि व्यवसाय में यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदनी मूलक व्यवसाय छनौट करा जाए। खेती व्यवसाय के नियमित अभिलेख रख के विश्लेषण करक बानी बैठावा जाए। बाजार देख के मात्र उत्पादन योजना बनावा जाए। व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार करके कार्यान्वयन करा जाए। सफल उद्यमी बनो, व्यवसाय के यहाँ निरंतरता देव विस्तार करा जाए करावा जाए। कृषि प्रावधिक विज्ञ लोगन से नियमित सलाह और सुझाव लीन जाए और वही अनुसार व्यवसाय कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करा जाए करावा जाए।
1: अकेले प्रयास से कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कई सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट हो के अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करा जाए करावा जाए।
2: तब आवश्यक सलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध कराने वाले कार्यालय केंद्र प्रयोगशाला निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जाता है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बाके।
3: बच्चा को भविष्य पढ़ाई ले मात्र हुए ना, सही वातावरण सही मार्गदर्शन र सही निर्णयले बनाउँछ। 600 बढी अभिभावकको रोजाई हो बाँकेको खजुरा चारमा अवस्थित अरुणोदय बोर्डिङ हाई स्कुल। 2053 सालदेखि निरन्तर गुणस्तरीय शिक्षामा समर्पित नर्सरीदेखि कक्षा 12 सम्म सञ्चालन भइरहेको यस विद्यालयमा प्रविधि मैत्री शिक्षा संस्कार र नैतिकतामा आधारित सिकाई खेलकुद र अनुशासनमा विशेष जोड कम्प्युटर संगीत खेलकुद मार्शल आर्ट चित्रकला योगा र उद्घोषण तालिम लगायतका तालिमहरू विद्यार्थीहरूको रुचि अनुसार सञ्चालन गरिन्छ। साथै बाल मैत्री वातावरण र हरियाली बगैंचा भएको सुरक्षित परिसर सीसीटीभी जडान भएको फराकिलो खेल मैदान र पार्किङको सुविधा भएको छात्राका लागि छुट्टै शौचालय शुद्ध खाने पानीको व्यवस्था र स्कुल बसको पनि सुविधा छ। तपाईको छोरा छोरीको उज्यालो भविष्यका लागि सही छनौट आजै गर्नुहोस्। भर्ना खुला छ, सीमित सिट भएकाले आजै सम्पर्क गर्नुहोस्।
4: सम्पर्क फोन नम्बर 98582019।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य शहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। यतिन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत है। साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड ब्राह्मी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे

0: से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में ही दवाई करावे, दवाई दर मत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारे के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98482697 98582397 और 98014-83697।
2: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
3: छोटो समय में धेरै संस्थामा डाक्टर इंजीनियर तथा सीए बनाउन सफल पेंटागन कलेज में कक्षा 11 को लागि विज्ञान व्यवस्थापन तथा कानून संकाय में भर्ना खुल्यो। पेंटागन कलेज तीन कुने काठमाडौँ।
4: बैक टू बैक, बैक टू बैक।

0: सूचना सूचना सूचना स्वास्थ्य शिविर बारे सूचना।
1: विश्व थायराइड दिवस को उपलक्ष्य में वरिष्ठ फिजिशियन एवं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डाक्टर अल्तावन राही द्वारा थायराइड संबंधी जांच तथा परामर्श सेवा हुन गइरहेको जानकारी गराइन्छ।
0: हजुर, थायराइड संबंधी जांच तथा परामर्श विशेषज्ञ डाक्टर परामर्श सेवा तथा संपूर्ण सेवाहरू मात्र रु 500 मा।
1: डाक्टर अल्तावन राही MD इंटरनल मेडिसिन TU एंडोक्राइनोलॉजी दिल्ली, वरिष्ठ फिजिशियन एवं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, NMC नंबर 11504।
0: संपर्क ठेगाना सुपर पोलिक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राली BP चोक नेपालगंज। संपर्क नंबर 081531860, 081531861 र मोबाइल नंबर 98584461। मिति 2083 जेठ 23 गते, समय बिहान 8 बजे देखि 3 बजे सम्म। सुपर पोलिक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राली BP चोक नेपालगंज में आज नाम दर्ता गरी ढुक्क हुनुहोस्। संपूर्ण सेवाहरू मात्र 500 मा लिन नभुल्नु होला।
2: हैन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
3: ओहो बाजे, अब उता आइन, ठ्याक्कै यता हेर्नुस् त पूर्वपट्टि।
4: हाम्रा सेवाहरू इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बंगारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, 24 घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, 24 घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
5: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081414007 र 98482363।
6: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
7: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि।
8: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पिरात है, बहुत दवाई कराए डालें, नाए ठीक आत है।
9: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बबासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लीन ब्रिय और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथ हैं, कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जाता है। और जाना थियो, हाथ गोड़ कहियाओ, रीढ़, टिहुनी पिराप, चंजनाहट हो, नस पिराप, जमजमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ हैं प्लास्टर बांधा जाता है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री लोगन के सब मेर के दवाई के साथ हैं ऑपरेशन किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ।
11: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बाँके। वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081531000।
12: आमाको उपचार गरौं भनेको कहाँ जाने होला?
13: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदै छ नि, पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
12: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
13: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै NICU, PICU, ICU, हाइटेक अपरेशन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
12: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
13: कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगंज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
12: सम्पर्क नम्बर 081535717। हजुरबालाई लामो समयदेखि कानको समस्या छ। नेपालगञ्जमा भरपर्दो र विश्वासिलो अस्पतालका लागि कहाँ जाने होला?
13: ए, त्यसो भए त चिन्तै लिनु पर्दैन नि। नेपालगञ्जमै रहेको बागेश्वरी कान स्वास्थ्य स्याहार केन्द्र छँदैछ नि। यहाँ त अनुभवी विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिकबाट हरेक दिन कान परीक्षण गरिन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, यहाँ त लामो समयदेखि कान पाकिरहने जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान चिलाउने, कान कम सुन्ने, कान डम्माउने बिरामीहरूको उपचार तथा परामर्श र लामो समयदेखि कान पाकिरहँदा कानको जालीमा प्वाल परेको, कान हड्डी खाने रोगको शल्यक्रिया अपरेसनबाट उपचार गरिन्छ। साथै कान कम सुन्ने बिरामीहरूका लागि कानमा लगाउने सस्तोदेखि महँगोसम्मका विभिन्न मोडेलका कानका मेसिन हियरिङ एड बिरामीहरूको चाहना अनुसार उपलब्ध गराइन्छ। बिटिई, सिआइसी, आरआइसी जस्ता मेसिनहरू पनि यही उपलब्ध छन्।
12: ए, त्यसो भए हजुरबालाई त्यहाँ लगेर उपचार गराउँदा स्पष्ट सुन्न सक्नु होला त?
13: अवश्य, समयमा उपचार गरेपछि धेरै सुधार सम्भव हुन्छ।
12: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य स्याहार केन्द्र,
13: नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, वडा नम्बर 6, फुलटेक्रा, आर्मी ब्यारेक सामुन्ने, राप्ती रोड, बाके। सञ्चालक पुरन चौधरी।
12: सम्पर्क नम्बर 98 84 20 697, 98 85 23 697 र 98 014 83 697।
13: बहिरोपण निवारण कार्यक्रममा सहभागी हौ, नियमित कानको जाँच गरौँ। नेपालगञ्जमा विगत 21 वर्षदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रावास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ।
14: फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहेन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
13: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको छ है।
14: होप इन्टरनेसनल एकाडेमी, गुणस्तरीय शिक्षाको भरपर्दो आधार।
13: थप जानकारीका लागि
14: सम्पर्क नम्बर 081-551-462, 98-580-24-462, 98-580-20-645। ठेगाना होटल रोयल बाँकेको पूर्वतिर, नेपालगञ्ज, बाँके।
13: ब्राइटल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुलमा व्यवस्थापन तथा विज्ञान संकायका लागि आवेदन खुला गरिएको छ।
15: हो, भर्ना खुल्यो। व्यवसाय, बैंकिङ, उद्यमशीलता, होटल व्यवस्थापन, वित्त, कानून, पर्यटन तथा कर्पोरेट नेतृत्व क्षेत्रमा भविष्य निर्माण गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि सुनौलो अवसर।
13: व्यवसाय अध्ययन, लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, कम्प्युटर विज्ञान, होटल व्यवस्थापन, पर्यटन, वित्त, व्यवसाय गणित र सामान्य कानून।
15: विज्ञान संकाय, चिकित्सा इन्जिनियरिङ, प्रविधि अनुसन्धान, स्वास्थ्य विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा विज्ञान सम्बन्धी क्षेत्रमा करियर बनाउन चाहने विद्यार्थीहरूका लागि
13: भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित र कम्प्युटर विज्ञान।
15: विद्यार्थीहरूले आफ्नो करियर लक्ष्य अनुसार गणित, जीव विज्ञान वा कम्प्युटर विज्ञान जस्ता विषय संयोजन छनौट गर्न पनि सक्नेछन्।
13: किन रोज्ने ब्राइटल्यान्ड?
15: हो, सबै विषयमा दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरू, केस स्टडी तथा परियोजनामूलक अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण,
13: पूर्ण दिवसीय कक्षा सञ्चालन, वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता सिप विकास,
15: आधुनिक विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान तथा होटेल व्यवस्थापन प्रयोगशाला, उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कार्यशाला,
13: नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, MBBS, BHM, BITM, BBA, CA, MBS तथा अन्य व्यवस्थापन तथा विज्ञान क्षेत्रका लागि करियर परामर्श,
15: उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको सुविधा। अफिस खुल्ने समय 7 बजेदेखि 5 बजेसम्म, प्रवेश परीक्षा 2083 ज्येष्ठ 15 गते, समय 10 बजे, कक्षा सञ्चालन 2083 असार 1 गतेदेखि। थप जानकारीका लागि
13: ब्राइटल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुल, पासाङ लामु रोड, नेपालगञ्ज। सम्पर्क फोन नम्बर 081-532-607, 530-602।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 4 बजेको छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference.

0: वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 98025 32568।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: Toilet Pony, yeah. Extreme energy drink.
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी ओ बनाई कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी ओ कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू करी
1: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकार्यक लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बाँके
3: एउटा राम्रो विद्यालयले केवल पढाइ मात्रै होइन बच्चाको भविष्य पनि बनाउँछ
4: नेपालगञ्जको बीपी चोकमा अवस्थित जीभीएन सेकेन्डरी स्कुल गुणस्तरीय शिक्षा अनुशासित वातावरण र अनुभवी शिक्षकहरूको उत्कृष्ट संयोजन हो यहाँ विद्यार्थीलाई पुस्तकको ज्ञानसँगै संस्कार आत्मविश्वास र जिम्मेवार नागरिक बन्ने शिक्षा दिइन्छ आधुनिक शिक्षण विधि र सुरक्षित वातावरणका कारण जीभीएन अभिभावकहरूको पहिलो रोजाई बन्न सफल भएको छ
3: यदि तपाईँ आफ्ना नानीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि विश्वासिलो र उत्कृष्ट विद्यालय खोजिरहनु भएको छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस् जीभीएन सेकेन्डरी स्कुल बिपी चोक नेपालगञ्ज
4: शिक्षा र सफलताको पर्याय जीभीएन सेकेन्डरी स्कुल सम्पर्क फोन नम्बर 081551570

0: व्यवसायिक कृषि पद्धति अपनावे के खातिर कृषक वर्ग के यहाँ कृषि व्यवसायक प्रवर्धन सहयोग और तालीम केंद्र खजुरा बाके के विशेष अनुरोध।
1: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसायिक पद्धति अपनाए के आय मूलक व्यवसाय मार्फत आत्मनिर्भर बना जाए और बनावा जाए। कृषि पेशा के यहाँ मर्यादित बनावे उद्यमशील विकास कई के रोजगारी सृजना करा जाए करावा जाए। कृषि व्यवसाय में यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदनी मूलक व्यवसाय छनौट करा जाए। खेती व्यवसाय के नियमित अभिलेख रख के विश्लेषण करक बानी बैठावा जाए। बाजार देख के मात्र उत्पादन योजना बनावा जाए। व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कई के कार्यान्वयन करा जाए। सफल उद्यमी बनो, व्यवसाय के यहाँ निरंतरता देव, विस्तार करा जाए करावा जाए। कृषि प्राविधिक विज्ञ लोगन से नियमित सर सलाह और सुझाव लीन जाए और वही अनुसार व्यवसाय कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करा जाए करावा जाए।
0: अकेले प्रयास से कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कर सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट हो के अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करा जाए करावा जाए।
1: तब आवश्यक सर सलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध करावे वाले कार्यालय केंद्र प्रयोगशाला निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जाता है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बांके।

0: बीर डेंटल
1: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमाडौं तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामी छाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
2: डाक्टर लामी छाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
1: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
2: फोन नम्बर 081-532-375।
3: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक आते।
4: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जात है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोष और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथ हैं, कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ हैं प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ हैं ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
4: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-000।
6: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्यज्योति सही प्लान,
7: सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि

नेपालगञ्ज खजुरा रोडमा अवस्थित एक उदयमान शैक्षिक गन्तव्य हो स्टार फ्युचर सेकेन्डरी स्कुल। गन्तव्य हो स्टार फ्युचर सेकेन्डरी स्कुल। 2069 सालमा

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँकी।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
2: बहिनी, हमार घर तो बढ़िया है, मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दी जस लागत है।
3: हाँ तो दीदिया, अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परी जस लागत है। आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही।
2: अच्छा, ऐसा तो चिंता काहे करी हो, स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है।
3: साचू दीदिया, का का मिलत है हुआ?
2: सुनो बहिनी, स्टाइलदार सोफा, आरामदायी बेड, आकर्षण डाइनिंग टेबल, टीवी रैक, ऑफिस फर्नीचर, गलीचा कारपेट के साथ है घर सजावे वाला सब सामान चीज एक जगह में मिलत है।
3: और डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार बनाई के देते है?
2: काहे न बनाए दी बहनी, अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है।
3: और मने डिलीवरी और फिटिंग?
2: अरे बहनी, बांके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है, इके साथ है फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है।
4: आस है तो अब हमरो घर भी नवाजस बनावे है, स्टार फर्नीचर लैंड से शुरू कीन जाए। हाँ दीदिया,
5: स्टार फर्नीचर लैंड शिक्षा कार्यालय के सामने बीपी चौक नेपालगंज, संपर्क नंबर 98680 73 70 और 98195 0 67 82।
1: सूचना सूचना सूचना, स्वास्थ्य शिविर बारे सूचना।
0: विश्व थायराइड दिवस को उपलक्ष्य में वरिष्ठ फिजिशियन एवं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डाक्टर अल्तावन राही द्वारा थायराइड संबंधी जांच तथा परामर्श सेवा होने गइरहेको जानकारी गराइन्छ।
1: हजुर, थायराइड संबंधी जांच तथा परामर्श, विशेषज्ञ डाक्टर परामर्श सेवा तथा संपूर्ण सेवाहरू मात्र ₹500 मा।
0: डाक्टर अल्तावन राही, MD इंटरनल मेडिसिन TU, एंडोक्राइनोलॉजी दिल्ली, वरिष्ठ फिजिशियन एवं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, NMC नंबर 11504।
1: संपर्क ठेगाना सुपर पोलिक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राली, बीपी चोक नेपालगंज। संपर्क नंबर 081531860 081531861 र मोबाइल नंबर 98584461। मिति 2083 जेठ 23 गते, समय बिहान 8 बजे देखि 3 बजे सम्म।

0: एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी